जोखिम टाड़ने भए वारी पारी झाड़ी बुट्यान घास राख्नु हुन्न साँझ पर्दा घर छोड़ी गाउँ।

0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364060।
1: यति बेला दिउँसोको

0: सपना कोई सपना क्यों नाम सुंदर सुंदर वो वक्का भैस के कि मैं था तो मत मैं कति माया गर्छु भनेर बिर्सिदेऊ न उसलाई प्लिज बिर्सिदेऊ न अरे प्लिज के
1: स्टप इट
0: बिर्सिदेऊ जसकी बिर्सिदेऊ न बिर्सिदेऊ जसकी बिर्सिदेऊ न